नेत्र बंद करके अखां बंद करके बोल के सुनना, मन सुनदा फिर अखां चों मन कन्नां च आ जांदा। वाह

हमारा, नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जिने आप सवारी, सेवकन को सब गुण सुख दियो, सतरन को पलमो बद कियो।

स्वयं पव आवरछा मेरी तुम करो सिख बार असिख संग्रह दुहट जिते उठवती उत्पाता सकल मिलेश करो रन कहता जे अहित तो तब सरनी परे तिनके दुहट दुहित हुआ मरे।

बचाई। कृपा करी हम पर जग माता, ग्रंथ कर पूर्ण सुभ राता, किलबिक सकल देह को हरता, दुष्ट दोखण का शय करता।

पाई संबद सतरह सहस पण जय अर्ध सहस पौन तीन कहि जय भाद्रव सदी अष्टमी रव वारा तीरस तद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्र उपख्यान तिरे चरित्रे मंत्री भूप संवादे

कर थारा। दास जान दे हाथी उबारू, हमरे सब बैरियां संघारू। प्रिथम धरो भगवत को ध्याना, बहुर करो कविता विद नाना।

वाहेगुरु जी की फतेह। परम सन्मान योग दसा ही पातशाहियां दी जोत सर्ब सांझी वालता दे प्रतीक शब्द गुरु धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पवित्र हजूरी विच विराजमान सत्कारयोग गुरु स्वरूप साध संगत जी, बहुत वडभागे हो गुरु चरणा विच बराज के गुरु सवारियां तों सोदा रहराज साहब जी दे पाठ गुरबाणी दे मनोर कीर्तन सरवण करके लाहे प्राप्त कर रहे सो। गुरु स्वरूप साध संगत जी, इस अस्थान ते रात्रि दे दीवाना विच संध्या वेले श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पवित्र बचना दी लड़ीवार कथा विचार दा सिलसिला निरंतर जारी है। उस अधीन हुणे हुणे आप जी ने चौकीदार पासों जो बचन सरवण कीते हन, गुरु स्वरूप साध संगत जी ये पवित्र बचन

सुख के कोई न जाने ऊचे ते ऊचा भगवंत सगल समग्री तुम रह सूत्र तारी तुमरी गात मित तुम ही जानी बोलना जी वाहिगुरु एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह श्री भगवती जी सहाय वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं प्रथम भगवती सिमर कै गुरु नानक लई त्याए फिर अंगद गुरते अमरदास रामदास हुए सहाय अर्जुन हर गोबिंद नाम सिमरव श्री हर राय श्री हर कृष्ण त्याई है जिह रिथे सब दुख जाए तेग बहादुर सिमरिया कर नाउन दयावे ताए सब थाई होए सहाय साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह दसवें पातशाह जी सब थाई होए सहाय दसा पातशाहिया दी जोत धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी दे पाठ दीदार दा ध्यान तरके बोलना जी पंजा प्यारियां चौहां साहिब जादियां चालियां मुक्तियां हठियां जपियां तपियां जिना नाम जपिया वंड के छकिया देख तलाई तेग वाही देख के अमृत कीता तिना प्यारियां सचारियां दी कमाई दा ध्यान तरके बोलना जी जिन्ना

वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु वाहेगुरु।

हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गुरु, हाँ गु

कै सिमरन कमल मिंगासन प्रभ कै सिमरन अनहद चुनकार सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार सिमरह से जन जन कौ प्रभ मया नानक तिन जन सरणी पया हर सिमरन कर भगत प्रगटाए हर सिमरन लग भेद उपाय हर सिमरन पै सिद्ध जति दाते हर सिमरन नीर चहुकुंट जाते हर सिमरन धारी सब तरना सिमर सिमर हर कारण करना हर सिमरन की

जपत दुख जाए, हर का नाम जपत दुख जाए, नानक बोले सहज सुपाए। चार पदार्थ जे को मांगे साजना की सेवा लागे, जे को अपना दुख मिटावे हर हर नाम हृदय सदगावे, जे को

के मन हर के नाम की प्रीत सुखदाई कर कृपा नानक आप लैलाई मिथ्या तन तन कुटाम सुबाया मिथ्या हा मैं ममता माया मिथ्या राज जोबन तन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल।

शिव पर करत गुमान अस थिर भगत साध की शरण नानक जप जप जीवे हर के चरण। मिथ्या श्रवण पर निंदा सुन है मिथ्या पर दर्प को हिर है

मरे जिसके अंतर बसे निंकार तिसकी सीख तरे संसार जो तुम भाने तिन प्रभ जाता नान गुण जन चरण प्रात करो बेनती पार ब्रह्म सब जाने अपना किया पहमाने आपे आप आव करतन मेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत नेरा

आवे जेह प्रसाद बसे सुख मंदर तिसे त्याय सदा मन अंदर जेह प्रसाद गृह संग सुख बसनाठ पहर सिमरह तिस रसना जेह प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा त्याही है त्यावन जोग जेह प्रसाद पाड़ पटंबर हंडावे तिसे त्याग कत अबर लुभावे

नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पहे नानक जन प्रभाव करे ब्रह्म ज्ञानी सगल किरी नाथ ब्रह्म ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी की सब उपर माया ब्रह्म ज्ञानी ते कश बुराना पहा ब्रह्म ज्ञानी सदा सुंदर सिंह ब्रह्म ज्ञानी केन्द्र अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी के निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान

भूमंडल कई कोट शशि हर सूर नक्षत्र कई कोट देवदान विंदर सिर छत्र सगल समग्रियां पड़ै सूत धार नानक।

आवे, कहो मानुक ते क्या हुए आवे, जो तिह पावे सोई करावे, इसके हाथ हुए तो सब कहले, जो तिह पावे सोई करे।

कभु ऊजनी में बस है कभु सोगर्ख रंग हसे कभु नींद चिंद व्यवहार कभु उब कास प्याल कभु बेता ब्रह्म विचार नानक आ मिला मन हार कभु नृत्य करे बहुपात कभु सोए रह दिन रात कभु महा क्रोध विकराल कभु सर्व की उद्रवाल कभु होए बह बड़ राजा कभु पे खारी नीच का साजा

थया। संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिलाय सजाए, संत का दुखी सदा सहकाइय, संत का दुखी ना मरे ना जीवाइय।

सिमर सिमर सिमर प्रभु सोए नानक बिघ्न लागे कोई उस्तद मन में करने कार कर मन मेरे सदा सत व्यवहार निर्मल रसना अमृत पियो सदा सुहेला कर ले जियो नैन पेघा गुर कर अंग सत्संग मिनसे सब संग चरण चलो मार गोबिंद मिटे पाव जपिये हर बिंद कर हर कर्म श्रवण हर कथा हर दुर्गे नानक उजल मथा बड़भागी तेह जन जग माहे सदा सदा हर के गुण गाहे सदा सदा हर के गुण गाहे राम नाम जो करे विचार से तनवंत गणी संसार मन तन मुख बोले हर मुखी सदा सदा जन होते सुखी एको एक एक पछाने तू की हो सोझी जाने नाम संग जिसका मन माने नानक तिन है निरंजन जाने गुरप्रसाद अपने आप सुजय तिसकी जान हो त्रिसना बुझे सात संग हर हर जस कहत सर्व रोग ते ओ हर जन रहत अनदन कीर्तन केवल बखियान गृहत मह सोई निर्वाण एक ऊपर जिस जन की आसा तिसकी काटी है जम की फासा।

पाए तनानक जाप जिन प्रभ जाता ससो बावंत सगल संसार उदरै तनमंत प्रभ के सेवक सगले उदाहरण प्रभ के सेवक दुख सारण

दाता तिसकी शरण सर्व सुख पावे तिस कै दर्श सब पाप मिटावे। अवर सियाण सगली छाड़ तिस जन की दू सेवा लाग आवण जान न होवी तेरा नानू तिस जन के पूजो सद पैरा सलोक सत पुरख जिन जानिया सतगुर तिस का नाव तिस कै संग सिख उदराय नानक हर गुण गाओ अष्टपदी। सात गुर सिख की करे प्रतपाल सेव कौ गुर सदा दयाल सिख की गुर दुरमत मल हिरे गुर बचनी हर नाम उचरै सतगुर सिख के बंधन काटै गुर का सिख विकार ते हटै सतगुर सिख को नाम धन दे गुर का सिख विड़ भागी है।

जान सो सतगुर जिस हृदय हर नाओ अनकबार गुर कौ बल जाओ सर्वनिधान जी का दाता आठ पहर पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन्म पार ब्रह्म एक आप नहीं काश परम सहस सियाणप लया न जाय नानक ऐसा गुर बिडभागी पाई है सफल दर्शन पेखत पनीत परसत चरण गात निर्मल नीत भेटत संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की धरगे गवे सुन कर बचन करन आगाने

संग परे सरनान सब त्यांग अंतर प्रगा संदन ले विलांग बुढ़भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेव कीमण सब पूरी पही सतगुर ते निर्मल मत लई।

सब साज ओद पोता प्रसंग राज ताकि गतमित कही न जाए दूसरे होय तस सोजी पाए तसका किया सब प्रवान गुर प्रसाद नान के हो जान जो जाने तिस सदा सुख होए मा आ मिलाए लय रब सोए ओह धनवंत कुलवंत पदवंत जीवन मुक्त जिस हृदय भगवंत धन धन धन जन आया जिस प्रसाद सब जगत तराया जन आवन कह सुहाव जन कह संग चित आवे नाओ आव मुक्त मुक्त करे संसार नानक ते जन को सदा नमस्कार सलोक पूरा प्रवे राध्या पूरा जा का नाव नानक पूरा पाया पूरे के गुण गाव अष्टपदी पूरे गुरु का सुन उपदेश पार ब्रह्म निगर कर पेख सास साह सिमरह गोबिंद माने अंतर की उतरै चिंद आस अनित त्याग तरंग संजना की धूर मन मांग आप छोड़ बेनती करहो साध संग गण सागर तरहो हर धन के परले हो भंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग भज परमानंद नरके निवार उधार हो जियो गुण गोबिंद अमृत रस पियो चित चित वो नारायण एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख भंजन पूर्ण कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी काहे आधार उत्तम सलोक साध के बचन अमलीक लाल रतन संत कुमावत होत उधार आप तरे लोके निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाके मन लागा रंग जय जय शब्द अनाह दुआजे सुन सुन हिंद करे प्रभु गाजे प्रगटे गोपाल महांत के माथे नान कुदरे तिन कह साथे सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रव्या मिलाए मिट गए बैर पहे सबरेन अमृत नाम साथ संग लैन सो प्रसन्न पहे गुरुदेव पूर्ण होई सेवक पूर्ण होई सेवक की सेवा जाल बकार त्रस्ते राम नाम सो रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभु धारी नानक निभी खेव हमारी प्रभु की उस्तद करो संत मीत सावधान एकाग्र चीत सुखमनी सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसे सहोदन दान सर्विच्छा तांगी पूर्ण होए प्रधान पुरख प्रगट सब लोए सब ती उज पाए स्थान बर न होवे अमन जान हर तन खार चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त होए खेम शांत हृदय नव निध बुद्ध ज्ञान सर्व तै सिद्ध विद्या ताप जोग प्राप्त ध्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम स्नान चार

सच सोचाए सोच न हो वही जे सोची लख बार चुपै चुप न हो वही जे लाए रहा लिबतार भुख्या भुख न उतरी जे बन्ना पुरिया भार सहस सियाणपा लख होहे त इक ना चले नाल किव सचियारा होई है किव कूड़ा तुटै पाल हुक्म रजाई चलना नानक लिखिया नाल हुक्मी होवन आकार हुक्म ना कहया जाई हुक्मी होवन जी हुक्म मिलै वडियाई हुक्मी उत्तम नीच हुक्म लिख दुख सुख पाईया है एक ना हुक्मी बख्शी सिख हुक्मी सदा पवाईया है हुक्मै अंदर सब को बाहर हुक्म ना कोए नानक हुक्मै जे बुझै ता हो मैं कहे ना कोए

जेती वर्णद भिन्न भिन्न तुय थेती तुमरा लखाना जाहे पसारा केहे वेद सजा प्रथम संसारा एक रूप अनूप स्वरूपा रंग भयो राम कहीं भूपा।

अटल शब्द गुरु धन धन आदि साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह जी दे पावन पवित्र हजूर जुड़ बैठी साध संग जीवन भागी हो आप जी अमृत वेले तो ही गुरु साहब जी दरबार दियां हाजरी भर रहे अमृत वेले तो ही गुरु घर विखे जुड़ के संगति रूप नाम जपया गया परन गुरु महाराज जी ने सोने तख्तां दे विराज बना के दर्शन दारे बख्शिश किते पितर कौम बख्शिश किते परंत गुरु महाराज की हजूरी च सुखमनी साहब जी दे पाठ पंजा बाणी नितनेम होए हन पितर हुकम आप जी ने सरण किते हन आन श्री आसा की वार दे शब्द कीर्तन आप जी नूं सरण करवाउणगे भाई साहब भाई सुखजीत सिंह जी कुहाड़कावल श्री सचखंड श्री हजूर सतसंग श्री हरिमंदर साहब जी हजूरी रागी जथा उन्हां पासों आज सरवण करो। अज छुट्टी का दिन है, अज शाम नूं 4:30 तो लैके 6 बजे तक नाम सिमरन होणगे संगति रूप विच वध तों वध हाजन भर के लाहे प्राप्त करने जी। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह।

अपने आप साजे अपने रचियो ना दो एक रो साजी अकर असन डिठो जाओ दाता करता है आप तो तुझ दे वह करे फसाओ तू जानो ही सब छे दिले सजित कबाओ कर असन डिठो जाओ कर असन डिठो जाओ।

जीवन व्यर्थ चला जाता। ज्यों उद्यान कुसुम प्रफुल्लत किने न कराओ लयो, तैसे प्रमत अनेक जोन में फिर काल हयो। बियाबान जंगल विच फुल खिड़िया, ना उन्हू किसी ने वेख्या, ना उदी तारीफ की, ना साध संगत जी उदी किसी ने खुशबू लई। ओ अपना जोबन एवे ही अजाई गवा के चढ़ गया। ए मनुखा जीवन प्राप्त होया ते एदा कोई लाहा लिया ही नहीं, इस प्रकार अवस्था बन गई। या तन जोबन अर सुत दारा, वेखन को जो दयो। हजूर कहिंदे ने आ जिहड़ा संसार दे विच तैनू घर बुआ दिता है ना, सोहना पुत्र दिता है, आ तैनू इस्त्री दिती है, धन दिता है, ये पता क्यों दिता है? गुरमुखो ये दिता है भी जपना ते नाम ही है, उथे तेरा दिल लगा रहे, तेरा मनोरंजन हुंदा रहे। तू सोफे ते बैठा धी वल वेखे ते उहनू वेख वेख के प्रसन्न होवे, पुत्र नू वेख वेख के शुकर करे। या तन जोबन अर सुत दारा, पेखन को वेखण वास्ते दिते सन। इनी ही मैं अटक जो उरझे, इंद्री प्रेर ले, अटकना नहीं सी, उरझना नहीं सी, इन्हां नू वेख वेख के आनंदित होना सी, पर पकड़ लगातार ढिली करनी सी, मजबूती वाहगुरु दे नाम नाल, सुरत ओदे नाल जोड़नी सी। इस वास्ते हजूर बख्शिश कर रहे ने, बिन गुर मूड़ भए है मनमुख। जिहड़े मन दे पिछे तुरन वाले ने वो मूर्खां वांगू ही अपना जीवन बतीत कर जांदे। बिन गुर मूड़ भए है मनमुख, ते मोह माया नित फाता। आम तौर ते साडे गुरुद्वारियां च करंसी नूं माया

सहाय। खालसा जी के बोल बाले बोलना जी, सिखा नु सिखी दान, केस दान, रह दान, विवेक दान, विसाह दान, प्रसादान, दाना सिर दान, नाम दान, श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इशनान, चौकिया झंडे बुंगे जुगो जुग अटल, धर्म का जयकार होवे बोलना जी। सिखां दा मान नीवां, मत उची मत पात दे रा।

छूट नहीं कोट लाख बाही, नाम जपत तह पार पराही, अनक विघ्न जह आय सिंगार, हर का नाम तत्काल उदार है।

अंतर जामी अपनी गत मिद जन हो आपे आपन संग आप प्रवराते तुमरी उस दिन तुम ते होए नानक वर न जान सकोए।

गुर प्रसाद नानक जस कह, जिह प्रसाद सुनहे करन नाद, जिह प्रसाद पेखे बिसंवाद, जिह प्रसाद बोलहे अमृत रसना, जिह प्रसाद सुख सहजे बसना, जिह प्रसाद हस्त कर चल है, जिह प्रसाद संपूर्ण फल है, जिह प्रसाद

सेवा साधु कै संग पाप पलायन साध संग अमृत गुण गायन साध के संग सर्व थान गम नानक साध के संग सफल जनम साध के संग नहीं कह काल दर्शन भेड़त होत निहाल साध कै संग कलुहत हरे साध के संग नरक पर हरे साध के संग ईहा मुहा सुहेला साध संग बिछरुत हर मेला जो इच्छा सोई फल पावे साध के संग न वृथा जावे पार ब्रह्म साध रिद बसै नानक उदरै साध सुन रसै साध के संग सुनो हर नाव साध संग हर के गुण गाओ साध के संग न मन ते बिसरै साध संग सर पर निस्तरै

संयोग साध की महिमा वेदना जाने जेता सुने तेता बख्याने साध की उपमा ते गुण ते दूर साध की उपमा रही पारपूर साध की शोभा का नाही अंत साध की शोभा सदा बेअंत साध की शोभा हुई ते उची साध की शोभा मुई ते मुची साध की शोभा साध बन आई नानक साध प्रभु भेदना पाई श्लोक मन साचा मुख साचा सोए अवर न पेख एक बिन कोय नानक लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए अष्टपदी ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेव जैसे जल में कमले ले ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्व कव सोख ब्रह्म ज्ञानी कै दृष्ट समान जैसे राय रंग कव लागे तुलपवान तो

का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी एक उपरवास, ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश, ब्रह्म ज्ञानी कै गरीबी सुमाह, ब्रह्म ज्ञानी परोपकार उमाहा, ब्रह्म ज्ञानी कै नाही धंधा, ब्रह्म ज्ञानी ले तावत बंदा, ब्रह्म ज्ञानी कै होए सुफला, ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला, ब्रह्म ज्ञानी संग सगले उधार, नानक ब्रह्म ज्ञानी जै पै सगल संसार।

ज्ञानी का सदादेश, ब्रह्म ज्ञानी का कथे न जायद आख्यर, ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर, ब्रह्म ज्ञानी की मद कौन बखाने, ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने, ब्रह्म ज्ञानी काम तन पार नान, ब्रह्म ज्ञानी का सदा नमस्कार, ब्रह्म ज्ञानी सब श्रेष्ठ का करता, ब्रह्म ज्ञानी सद जीव नहीं मरता,

सोई थया। संत का दुखी बिगड़ रूप हो जाए, संत के दुखी को दरगह मिले सजाए, संत का दुखी सदा सहकाइए, संत का दुखी ना मरे ना जीवाइए। संत के दुखी की पुजे नासा, संत का दुखी उठ चले निरासा, संत के दुख न त्रिस तै कोई जैसा पावे तैसा कोई होए। भया कीर्तन बेटे कोई नानक जाने, सच्चा सोए सब कर तिसके हो करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार।

न भूज करत विचार करते कि मैं तना जाने किया नानक जो तिस पावे सो वृतिया बिस्मन बिस्म पह बिस्माद जिन बूझया तसाया स्वाद।

पार ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म एक आप नहीं कछ परम सहस सियान पलया न जाइये नानक ऐसा गुरबिट भागी पाइये सफल दर्शन पेखत पुनीत परसत चरण गत निर्मल रीत भेट संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगे गवे सुन कर बचन करन आगाने मन संतोख आत्म पदिया ने पूरा गुर ख्यो जाका मंत्र अमृत दृष्ट पेख है होए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस भावे तिस लय मिलाए

अनक भगत बंधन नित कर है चरण कमल हृदय सिमरे सद बलिहारी सदगुरिया प्रेम नानक जिस प्रसाद है सब प्रभ जपने।

सर्वाथ एह तहन संचह हो वो भगवंत संजना का निर्मल मंते का राख मन माए सर्व रोग नानक मिट जाहे। जिह धन को चार कुंड उड़तावे सो धन हर सेवा ते पावे। जिह सो को नित बाछे मीत सो सुख साधु संग परीत। जिह सोभा को करह भली करनी सा सोभा परिहर की सरनी अन की पावी। रोग न जाए रोग मिटे हर वख दलाए।

कहो किसे व्याप्त। जब आपने आप वाह पार ब्रह्म तब मोह कहाँ किसे उत्पर में आपने खेले आवृति जाना न करने हार न दूजा। जब होत प्रभु केवल तनी तब बांध मुक्त कहो किस कहो गणी। जब एक कह हर अग में पार तब नरक स्वरूप कहो कौने उतार। जब निर्गुण प्रभु सहित सिपाह तब शिव शक्त कहो कित ठाय। जब आपे आप अपनी ज्योत धरे तब कम निडर कमन कद डरे। आपन चलते आप करने हार नानक ठाकुर अग में पार। अविनाशी सुख अपने आसन तह जन्म मरण कहो कहाँ विनाशन। जब पूर्ण करता प्रभु सोए तब जम की त्रास कह किस होए।

दृष्ट दर्शन पेख उदृत श्रेष्ठ चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हार रूप तन सेवा सेव प्रवान अंतरजामी पुरख प्रधान जस मन बसे सोहोत निहाल ता कै निकट नावत काल अमर पहे अमरा पद।

मिश्राम सुन समाद अणह तैनाद कह न जाई अचरित बिसमाद तिन देख्या रे साहब दिखाए नानक तेजन सोजी पाए सो अंतर सो बाहरे नंत घट घट ब्याप रहे भगवंत तरन माहे

लय सुमाय इसते हो सुना ही बुरा हो रे कहो कि न कश करा आप भला करतु देवनी की आपे जाने अपने जी की आप साच धारी सब साज ओत पोता अपन संग राज।

मिलाए। मिट गए बैर पहे सबरेन, अमृत नाम साध संग लैन, सो प्रसन्न पहे गुरुदेव, पूर्ण होई सेवक की सेव। आल जाल बुकात रहते, राम नाम सो रसना कहते, कर प्रसाद दया प्रभ तारी, नानक निबही खेप हमारी। प्रभु की उस्तद करो संत मीत, सावधान एकाग्र चीत, सुखमनी सह

प्रसाद आदि गुर ए नम है, जुगाद गुर ए नम है, सत गुर ए नम है, श्री गुरुदेव ए नम है। अष्टपदी सिमरो सिमर सिमर सुख पावू, कल कलेश तन मैं मिटावू। सिमरो जस बसंबर एकै, नाम जब तक अनंता नेकै। वेद प्राण सिमर सुदाखरी, कीने राम नामी काखरी। किनका एक जी जी बसावै, तांकी महिमा गणी न आवै। कांकी एकै दर्श तुहारू, नानक उन संग मोहे अदारू। सुखमणि सुख अमृत प्रभ नाम, भगत जना कै मन विश्राम रहो। प्रभ का सिमरन गर्भ न बसै, प्रभ का सिमरन दुख जम नसै। प्रभ का सिमरन काल परहरे, प्रभ का सिमरन दुश्मन टरे। प्रभ सिमरत किस बगन न लागे, प्रभ का सिमरन अन दिन जागे। प्रभ का सिमरन पौ न व्यापै, प्रभ का सिमरन दुख न संतापै। प्रभ का सिमरन साधका संग, सर्व दान नानक हर रंगे। प्रभ कै सिमर दि सिद्ध नौ निधि, प्रभ कै सिमन ज्ञान ध्यान तत बुद्धि। प्रभ कै सिमन जप तप पूजा, प्रभ कै सिमरन बिनसै दूजा। प्रभ कै सिमन तीर्थ स्नानी, प्रभ कै सिमन दरगाह मानी। प्रभ कै सिमन होई सुपला, प्रभ कै सिमन सुफल फला। से सिमरे जिन आप सिमराए, नानक ता कै लाग्य उपाए। प्रभ का सिमरन सबति ऊंचा, प्रभ का सिमरन उदरे मूचा। प्रभ का सिमरन तृष्णा बूजा, प्रभ का सिमरन सब किस जाय। प्रभ का सिमरन जम तरासा, प्रभ का सिमरन पूर्ण आसा। प्रभ का सिमरन की मल जाई, अमृत नामृत माहे समाये। प्रभ जी बसे साधकी रसना, नानक जन का दासन दसना। प्रभ को सिमरे से तनवंती, प्रभ को सिमरे से पतवंती। प्रभ को सिमरे से जन परवान, प्रभ को सिमरे से पुरख प्रदान। प्रभ को सिमरे से बे मोहताजी, प्रभ को सिमरे सर्व के राजे। प्रभ को सिमरे से सुखवासी, प्रभ को सिमरे सदा बनासी। सिमरत लग जिने आप दयाला, नानक जन की मंगा रवाला। प्रभ को सिमरे से परउपकारी, प्रभ को सिमरे तिन सद बलहारी। प्रभ को सिमरे समुख सहावी, प्रभ को सिमरे तिन सुख बहावै। प्रभ को सिमरे तिन आत्म जीता, प्रभ को सिमरे तिन निर्मल रीता। प्रभ को सिमरे तिन आनंद कनेरी, प्रभ को सिमरे बसे हर नेरे। संत कृपाते अन दिन जागी, नानक सिमरन पूरे पाग। प्रभ का सिमरन कार्य पूरे, प्रभ का सिमरन कबू न झूरे। प्रभ का सिमरन हर गुण बाणी, प्रभ कै सिमरन सह समाणी। प्रभ कै सिमरन नीचल आसन, प्रभ कै सिमरन कमल बिगासन। प्रभ कै सिमरन अंत चुनकारी, सुख प्रभ सिमरन का अंत न पार। सिमरे से जन जिन को प्रभ मया, नानक तिन जन सरणी पया। हर सिमरन कर भगत प्रगटाई, हर सिमरन लग बेद उपाय। हर सिमरन पय सिज दाती, हर सिमरनी चौंकुट जाती। हर सिमरन तारी सब तरना, सिमर सिमर हर कारण करना। हर सिमरन कियो सगला अकारा, हर सिमरन मैं आप निरंकारा। कर कृपा जिसे आप बजाया, नानक गुरमुख हर सिमरन तिन पाया। सलोक दीन दर दुख पंजना, कट कट नाथ नाथी। सरन तुम्हारी आयु, नानक के प्रभ साथ। अष्टपदी जह मात पिता सुत मीत न पाई, मनुहा नाम तेरे संग सहाई। जह महा पैन दूत जम दली, तै केवल नाम संग तेरा चले। जै मुश्किल हो वेत भारी, हर को नाम खिन माहे उदारे। अनक पुण चरण करत नहीं तरे, हर को नाम कोट पाप पर हरे। गुरमुख नाम जपो मन मेरी, नानक पावू सुख कनेरे। सगल सिष्ट को राजा दुखिया, हर का नाम जपत हुई सुखिया। लाख करोड़ी बंधन परे, हर का नाम जपत निस्तरे। अनक मार रंग तिखना बजावै, हर का नाम जपता कावे। जे मार्गे जात अकेला, तै हर नाम संग होत सहेला। ऐसा नामन सदा त्याया, नानक गुरमुख परम गत पाइया। छूटत नाही कोट लख बाही, नाम जपतै पार पराही। अनक बिगन जा आए संगारै, हर का नाम तत्काल उदारै। अनक जोन जन मैं मर जाम, नाम जपत पावै विश्राम। हाउ मैला मल कबू न तोवै, हर का नाम कोट पप खोवै।
ऐसा नाम जपो मन रंग नानक पाईया साधका संग जे मार का गणे जह न कोसा हर का नाम मुहा संतोसा जे पेंडे मैं अंध गबारा हर का नाम संग जयारा जहां पंते रेको नान संजानू हर का नाम तै नाल पिछानू जय महापैंड तप्त बहु काम तै हर के नाम तुम्हें ऊपर शाम जय तेरे खा मन तुझे अकरखे तै नानक हर हरे अमृत बरखे भगत जना की बर्तन नाम संत जना कै मन विश्राम हर का नाम दास की ओट हर कै नाम उदरे जन कोट हर जस करत संत दिन रात हर हरे औखद साध कमात हर जन कै हर नाम निदान पार ब्रह्म जन की नो दान मन तन रंग रते रंग एक नानक जन कै बिरत बबेक हर का नाम जन को मुख जुगत हर कै नाम जन को तृप्त भुगत हर का नाम जन का रूप रंग हर नाम जपत कब परे न पंग हर का नाम जन की वडियाई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जन को भोग जोग हर नाम जपत कुछ नाही बियोग जन रता हर नाम की सेवा नानक पूजा हर हर देवा हर हर जन कै माल खजीना हर तन जन को या प्रभ दीना हर हर जन कै ऊट सतानी हन हर प्रताप जन अवर न जानी ओत पोत जन हर रस राती सुन समाद नाम रस माते आठ पैर जन हर हर जपै हर का भगत प्रगट नहीं छपे हर की भगत मुक्त बहु करे नानक जन संकेते तरे पार जाते हर को नाम काम तेन हर हर गुण गाम सबते उत्तम हर की कथा नाम सुनत दर दुख लथा नाम की महिमा संतरद बसे संत प्रताप दुरत सब नस संत का संग वड पागी पाईया संत की सेवा नाम ते आईया नाम तुल कशावर न होए नाने गुरमुख ना पावे जन कोई सलोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सरब टडोल पूज सनाही हर हरे नानक नाम अमोल अष्टपदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खट शास्त्र सिमरत वख्यान योग ब्यास कर्म तर्म किरिया सगल त्याग बन मध्य फिरिया अनक प्रकार किए बहु जतना पुण दान हो में बहु रतना सिर कटाए हो में कर राती वर्त नेम करे बहु पाती नहीं तोल राम नाम बिचारी नानक गुरमुख नाम जपिया एक बार नौखंड पृथ्वी फिरे चर जीव महादास पीछर थी वह अगन मैं होवत प्राण कन कैसव है वर पुमदान न्यौली कर्म करे बहु आसन जैन मार्ग संजम अत साधन निमख निमख कर सिर कटावे तो भी हम मैं मैल न जावे हर के नाम समसर कुछ नाही नानक गुरमुख नाम जपत गत पाही मन कामना तीर दे छुटे गर्व गुमान ना मन ते हुटे सोच करे दिन सार रात मन की मैल न तन ते जात इस देही को बहु साधना करे मन ते कबहू ना बिखिया टरे जल तो वे बहु देह अनीत सुध कहा हुई काची पीत मन हर के नाम की मैं माऊचे नानक नाम उदरे पतित बहुमूचे बहुत सियानप जम का पाओ व्यापे अनक जतन कर त्रिसना न त्रापे पेक अनेक अगन नहीं बूजै कोट अपाव दर गैने सीजै छूट सनाही उब प्याले मोह ब्यापे माया जाले अवर करतु सगली जम डाने गोविंद भजन बिन तल नहीं माने हर का नाम जब दुख जाई नानक बोले सह सबाई चार पदार्थ जे को मांगे साज जना की सेवा लागे जे को अपना दुख मटावै हर हर नाम हृदय सदगावे जे को अपनी शोभा लोरे साध संगे होमै छोरे जे को जन्म मरण ते डरे साध जना की सरनी परै जिस जन को प्रभ दर्श प्यासा नानक तां कै बल बल जासा सगल पुरख मैं पुरख प्रदान साध संग जां का मिटे अभिमान आपस को जो जाने नीचा सौ गणिया सब ते ऊंचा जां का मन हुई सगल किरीना हर हर नाम तिन कट कट चीना मने अपने ते बुरा मिटाना पेख है सगल शिष्ट साजना सुख दुख जन सम दृष्टिता नानक पाप पुन नहीं लेपा निरतन को तन तेरू नाऊ निथावे को नाऊ तेरा थाऊ
ਨਮਾਣੇ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੋ ਮਾਨ ਸਗਲ ਕਟਾਕੋ ਦੇਵੋ ਦਾਨ ਕਰਨ ਕਰਾਵਨ ਹਾਰ ਸਵਾਮੀ ਸਗਲ ਕਟਾਕੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਆਪਣੀ ਗਤਮਿਤ ਜਾਨੋ ਆਪੇ ਆਪਣ ਸੰਗ ਆ ਪ੍ਰਭ ਰਾਤੇ ਤੁਮਰੇ ਉਸਤਤ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਅਵਰ ਨਾ ਜਾਣ ਸਕੋਏ ਸਰਬ ਧਰਮ ਮੈਂ ਸਿਸ਼ਟ ਧਰਮ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਜਪ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਸਗਲ ਕਿਰਿਆ ਮੈਂ ਉੱਤਮ ਕਿਰਿਆ ਸਾਹ ਸੰਗ ਦੁਰਮਤ ਮਲ ਹਿਰਿਆ ਸਗਲ ਉਦਮ ਮੈਂ ਉਦਮ ਭਲਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪੋ ਜੀ ਸਦਾ ਸਗਲ ਬਾਣੀ ਮੈਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਹਰ ਕੋ ਜਸੁਨ ਰਸਨ ਬਖਾਣੀ ਸਗਲ ਥਾਨ ਤਿਉ ਉੱਤਮ ਥਾਨ ਨਾਨਕ ਜੈ ਕਟ ਵਸੇ ਹਰ ਨਾਮ ਸਲੋਕ ਨਿਰਗੁਣ ਆਰੇ ਆਨਿਆ ਸੋ ਪ੍ਰਭ ਸਦਾ ਸਮਾਲ ਜਿਨ ਕੀਆ ਤਿਸ ਚੀਤ ਰਾਖੇ ਨਾਨਕ ਨਿਭਹੀ ਨਾਲ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਰਮਈਆ ਕੇ ਗੁਣ ਚੇਤ ਪਰਾਣੀ ਕਵਣ ਮੂਲ ਤੇ ਕਵਣ ਦਿਸ਼ਟਾਣੀ ਜਿਨ ਤੂੰ ਸਾਧ ਸਵਾਰ ਸਿਗਾਰਿਆ ਗਰਭ ਅਗਨ ਮੈਂ ਜਿਨੇ ਉਭਾਰਿਆ ਬਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਤੁਝੇ ਪਿਆਰੇ ਦੂਦ ਪਰ ਜੋ ਬਣ ਪੂਜਨ ਸੁਖ ਸੂਦ ਬਿਰਧ ਪਿਆ ਉੱਪਰ ਸਖ ਸੈਣ ਮੁਖ ਅਪਿਆਓ ਬੈਠ ਕੋ ਦੈਣ ਇਹ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਕਛੂ ਨਾ ਬੂਜੈ ਬਖਸ ਲਿਹੋ ਤੋ ਨਾਨਕ ਸੀਜੈ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾ ਤਰ ਉੱਪਰ ਸੁਖ ਬਸੈ ਸੁਤ ਪ੍ਰਾਤ ਮੀਤ ਬਨੰਤਾ ਸੰਗ ਹਸੇ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪੀ ਵਹਿ ਸੀਤਲ ਜਲਾ ਸੁਖਦਾਈ ਪਵਨ ਭਾਵਕ ਅਮੁਲਾ ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੋਗ ਹੈ ਸਭ ਰਸਾ ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਸੰਗ ਸਾਥ ਬਸਾ ਦੀਨੇ ਹਸਤੇ ਪਵ ਕਰ ਨੇਤਰ ਰਸਨਾ ਤਿਸੇ ਤਿਆਗ ਅਵਰ ਸੰਗ ਰਚਨਾ ਐਸੇ ਦੁਖ ਮੁੜ ਅੰਧ ਬਿਆਪੀ ਨਾਨਕ ਕੱਢ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭ ਆਪੀ ਆਦੰਤ ਜੋ ਰੱਖਣ ਹਾਰੇ ਤਿਸਿਓ ਪ੍ਰੀਤ ਨ ਕਰੈ ਗਵਾਰ ਜਾਂਕੀ ਸੇਵਾ ਨਾਮ ਨਿਧ ਪਾਵੈ ਤਾਂ ਸਿਉ ਮੂੜਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਲਾਵੈ ਜੋ ਠਾਕੁਰ ਸਾ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ ਤਾਂ ਕੋ ਅੰਧਾ ਜਾਣਤ ਦੂਰੇ ਜਾਂਕੀ ਟੈਲ ਪਵ ਦਰਗਾਹ ਮਾਣ ਤਿਸੇ ਬਸਾਰੇ ਮੁਗਧ ਅਜਾਣ ਸਦਾ ਸਦਾ ਇਹ ਪੂਲਨ ਹਾਰੇ ਨਾਨਕ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਅਪਾਰੇ ਰਤਨ ਤਿਆਗ ਕੌਡੀ ਸੰਗ ਰਚੇ ਸਾ ਛੋੜ ਝੂਠ ਸੰਗ ਮਚੇ ਜੋ ਛੱਡਣਾ ਸੋ ਅਸਥਿਰ ਕਰ ਮਾਨੇ ਜੋ ਹੋਮਨ ਸੋ ਦੂਰ ਪਰਾਨੇ ਛੋੜ ਜਾਈ ਤਿਸ ਕਾ ਸ਼ਰਮ ਕਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਤਿਸ ਪਰ ਹਰੇ ਚੰਦਨ ਲੇਪ ਉਤਾਰੇ ਧੂਏ ਗਰਤ ਪ੍ਰੀਤ ਪਸਮ ਸੰਗ ਹੋਏ ਆਂਧ ਕੂ ਮੈਂ ਪਤਿਤ ਬਿਕਰਾਲੇ ਨਾਨੇ ਕਾਢ ਲਿਹੋ ਪ੍ਰਭ ਦਿਆਲੇ ਕਰਤੂਤ ਪਸ਼ੂ ਕੀ ਮਾਨਸ ਜਾਤ ਲੋਕ ਪਚਾਰਾ ਕਰੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਬਾਹਰ ਪੇਖ ਅੰਤਰ ਮਲ ਮਾਇਆ ਛਪਛ ਨਾਹੀ ਕਿਛ ਕਰੇ ਸਪਾਇਆ ਬਾਹਰ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅੰਤਰ ਵਿਆਪੈ ਲੋਭ ਸਵਾਣ ਅੰਤਰ ਅਗਨ ਬਾਹਰ ਤਨ ਸੁਆਹਾ ਗਲ ਪਾਥਰ ਕਸਤਰੈ ਅਥਾਹਾ ਜਾਂ ਕੈ ਅੰਤਰ ਬਸੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪ ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨ ਸਹਿਜ ਸਮਾਤ ਸੁਣ ਅੰਧਾ ਕੈਸੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੈ ਕਰਗਹਿ ਲਿਹੋ ਉਣ ਬਹਾਵੇ ਕਹਾ ਬਜਾਰਤ ਬੂਜੇ ਡੋਰਾ ਨਿਸਗਹਿਆ ਤੋ ਸਮਝੇ ਪੋਰਾ ਕਹਾ ਬਿਸਨਪਦ ਗਾਵੇ ਗੁੰਗ ਯਤਨ ਕਰੇ ਤੋ ਬੀ ਸਰ ਭੰਗ ਕਹਿ ਪਿੰਗਲ ਪਰਬਤ ਪਰ ਭਵਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਤੂੰ ਹਾਉਸ ਗਮਨ ਕਰਤਾਰ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਦੀਨ ਬੇਨਤੀ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਤੂੰ ਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਤਰੇ ਸੰਗ ਸਹਾਈ ਸੂ ਆਵੇ ਨਾ ਚੀਤ ਜੋ ਬੈਰਾਈ ਤਾਂ ਸਿਉ ਪ੍ਰੀਤ ਬਲੂਆ ਕੇ ਗ੍ਰਹਿ ਪੀਤਰ ਬਸੈ ਆਨੰਦ ਕੇਲ ਮਾਇਆ ਰੰਗ ਰਸੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਮਾ ਨੇ ਮਨਹਿ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਾਲ ਨਾ ਆਵੇ ਮੂੜੈ ਚੀਤ ਬੈਰ ਵਿਰੋਧ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਮੋਹ ਝੂਠ ਬਿਕਾਰ ਮਹਾ ਲੋਭ ਤਰੋਹ ਆਹੋ ਜਗਤ ਬਹਾਨੇ ਕਈ ਜਨਮ ਨਾਨਕ ਰਾਖ ਲਿਓ ਆਪਣ ਕਰ ਕਰਮ ਤੂੰ ਠਾਕਰ ਤੂੰ ਪੈ ਅਰਦਾਸ ਜੀਉ ਪਿੰਡ ਸਭ ਤੇਰੀ ਰਾਸ ਤੂੰ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ ਤੁਮਰੀ ਕਿਰਪਾ ਮੈਂ ਸੂਖ ਕਨੇਰੇ ਕੋਈ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੁਮਰਾ ਅੰਤ ਉੱਚੇ ਤੇ ਉੱਚਾ ਭਗਵੰਤ ਸਗਲ ਸਮੱਗਰੀ ਤੁਮਰੇ ਸੂਤਰ ਤਾਰੀ ਤੁਮ ਤੇ ਹੋਈ ਸੁਆਗਿਆਕਾਰੀ ਤੁਮਰੀ ਗਤਮਿਤ ਤੁਮ ਹੀ ਜਾਣੀ ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਸਦਾ

ना में पत जाए अष्टपदे दस वस्तु ले पाछै पावे एक वस्त कारण बिखोट गवावै एक पी ना दे दस पी हिर ले तो मूड़ा कहूं कहा करे जिस ठाकर स्यो नाही चारा ताको कीजे सद नमस्कारा जां कै मन लागा प्रभ मीठा सर्ब सुख ताहू मन बूठा जिस जने अपना हुक्म मनाया सर्ब थोक नानक तिन पाया अगनंत सहु अपन दे रासे खात पीत बरते आनंद उलासे अपने मानकश बाहर साहुले अज्ञानी मन रोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवै बहरुस का विश्वास न होवै जिसकी बचत से आज्ञा राखे प्रभ की आज्ञा माना माथे उसते चौगन करे निहाल नानक साहिब सदा दयाल अनक पात माया के हेत सर पर होवत जान अनेत बिरखी साया स्यो रंग।

मन हर के नाम की प्री सुखदाई, कर कृपा नानकी आपे ले लाई। मिथ्या तन धन कटंब संभाया, मिथ्या होमे ममता माया। मिथ्या राज जुबन तन माली, मिथ्या काम क्रोध विकराल। मिथ्या रथ हस्ती अस वस्त्रा, मिथ्या रंग संग माया पेख हस्ता। मिथ्या त्रु मोह अभिमान, मिथ्या आपस ऊपर करत गुमान। अस्थिर भगत साध की शरण, नानक जप जप जीव हर के चरण। मिथ्या सरवण पर निंदा सुन है, मिथ्या हस्त पर दर्ब दर्ब को हिर है। मिथ्या नेत्र पीत पर त्रया रूपादि, मिथ्या रसना भोजन अन स्वाद। मिथ्या चरण पर विकार कुतावे, मिथ्या मन पर लोभ लबावे। मिथ्या तन नहीं पर उपकारा, मिथ्या बासलित बेकारा। बिन बूझे मिथ्या सप पई, सफल दे नानक हर हर नाम ले। बिरथी सख्त की आरजा, साथ बिना कह होवत सूचा। बिरथा नाम बिना तन आंदी, मुख आवता कै दुर्गंधी। बिन सिमरन दिन रहन बिरथा बहाई, मेघ बिना ज्यों खेती जाई। गोद भजन बिन बिरथे सब काम, ज्यों किरपन के निरार्थ दाम। तन तन ते जन जा कट बस्यो हर नाओ, नानक ता कै बल बल जाओ। रहत अवर कश अवर कमावते, मन नहीं प्रीत मुखो गंड लावते। जान नहारी प्रभ परबीन, बाहर पेख ना काहू पीन। अवर अपदेश है आप न करै, आवत जावत जन्मै मरै। जिसका अंतर बसै निरंकारी, तिसकी सीख तरै संसारी। जो तुम पाने तिन प्रभ जाता, नानके उन जन चरण पराता। करो बेनती पर ब्रह्म सब जाने, अपना किया आपे माने। आपे आप करत नबेड़ा, किसे दूर जन आवत किसे बजावत नेरा। उपाव स्यानप सगल ते राती, सब किस जाने आत्म की राती। जिस पावे तिस लए लड़ लाई, थान थनंतर हा समाई। सो सेवक जिस कृपा करे, निमख निमख जप नानक हरी सलोक। काम करो दयारे लोभ मोह, बिन सजाए अहमेव। नानक प्रभ सरनागति, कर प्रसाद गुरुदेव। अष्टपदी जे प्रसासति अमृत खाही, तिस ठाकर को रख मन माही। जे प्रसाद सुगंतन लावह, तिसको सिमरत परम गत पावह। जे प्रसाद बसे सुख मंदर, तिसे त्याई सदा मन अंदर। जे प्रसाद ग्रह संग सुख बसना, आठ पैर सिमरो तिस रसना। जे प्रसाद रंग रस पोग, नानक सदा त्याई है त्यावन जोग। जे प्रसाद पटपन बढ़ावी, तिसे त्यागत अवर लभाव है। जे प्रसाद सुख से सोई जे, मन आठ पैर तांका जस गवी जे। जे प्रसाद तुझ सब को माने, मुखता को जस रसन बखाने। जे प्रसाद तिरु रहता धर्म, मन सदा त्याई केवल पार ब्रह्म। प्रभ जी जपत दरगाह मन पावहि, नानक पत सेति कर जावहि। जे प्रसाद रो कंचन देही, लिव लावो तिस राम स्नेही। जे प्रसाद तेरा ओला रहती, मन सुख पावे हर हर जस कहती। जे प्रसाद तेरे सगल सिद्र टाके, मन सरनी पर ठाकर प्रभ ताके। जे प्रसाद तुझ को ना पहुंचा, मन साथ साथ सिमरो प्रभ उच्चा। जे प्रसाद पाई दुर्लभ देहे, नानक ताकी भगत करे। जे प्रसाद अपूखन पहरी जे, मन ति सिमरत को आलस की जय। जे प्रसाद ऐसव हस्त सवारी, मन तिस प्रभ को कबू ना बसारी। जे प्रसाद बग मिलख तना, राख परोए प्रभ अपने मना। जिन तेरी मन बनत बनाई, उठत बैठत तिसे ते आई। तिसे ते आई जो एक अलख है, इहा उहा नानक तेरी रख है। जे प्रसाद करे पुन बहुदान, मन आठ पैर कर तिसका त्यान। जे प्रसाद तू चार बिहारी, तिस प्रभ को सा चितारी। जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप, सो प्रभ सिमरु सदा अनूप। जे प्रसाद तेरी नीकी जात, सो प्रभ सिमर सदा दिन रात। जे प्रसाद तेरी पत रहे, गुर प्रसाद नानक जस कहे। जे प्रसाद सुने करनाद, जे प्रसाद पेखे बिस्माद।
ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬੋਲੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸਨਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ ਬਸਨਾ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਹਸਤ ਕਰ ਚੱਲ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਪੂਰਨ ਫਲ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮਗਤ ਪਾਵ ਹੈ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸੁਖ ਸਹਿਜ ਸਮਾਵ ਹੈ, ਐਸਾ ਪ੍ਰਭ ਤਿਆਗ ਵਰਕਤ ਲਾਗੋ, ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਮਨ ਜਾਗੋ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਸੰਸਾਰ, ਤਿਸ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਮੂਲ ਨਾ ਮਨਹੋ ਵਿਸਾਰ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰਾ ਪ੍ਰਤਾਪ, ਰੇ ਮਨ ਮੂੜ ਤੂੰ ਤਾਂ ਕੋ ਜਾਪ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੇਰੇ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ, ਤਿਸੇ ਜਨ ਮਨ ਸਦਾ ਹਜੂਰੇ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤੂੰ ਪਾਵੇ ਸਾਚ, ਰੇ ਮਨ ਮੇਰੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿਉ ਰਾਚ, ਜੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਕੀ ਗਤ ਹੋਏ, ਨਾਨਕ ਜਾਪ ਜਪੇ ਜਪ ਸੋਏ, ਆਪ ਜਪਾਏ ਜਪੇ ਸੋ ਨਾਉ, ਆਪ ਗਵਾਏ ਸੋ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਹੋਏ ਪਰਗਾਸ, ਪ੍ਰਭ ਦਿਆ ਤੇ ਕਮਲ ਵਿਗਾਸ, ਪ੍ਰਭ ਸੁਪ੍ਰਸੰਨ ਬਸੇ ਮਨ ਸੋਏ, ਪ੍ਰਭ ਦਿਆ ਤੇ ਮਤ ਉੱਤਮ ਹੋਏ, ਸਰਮ ਨਿਦਾਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੀ ਮਾਇਆ, ਆਪੋ ਕਛੂ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਲਾਇਆ, ਜਿਤ ਜਿਤ ਲਾਵੋ ਤਿਤ ਲੱਗੇ ਹਰ ਨਾਥ, ਨਾਨਕੇ ਨਕੇ ਕਛੂ ਨਾ ਹਾਥ। ਸਲੋਕ ਅਗਮ ਅਗਾਧ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸੋਏ, ਜੋ ਜੋ ਕਹੇ ਸੁਮੁਕਤਾ ਹੋਏ, ਸੁਣ ਮੀ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ, ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮੁਖ ਉਜਲ ਹੋਤ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੀ ਖੋਤ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਅਭਿਮਾਨ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੇ ਸੁਗਿਆਨ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਬੂਜੈ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਬੇੜਾ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਏਕ ਉਪਰ ਜਤਨ, ਸਾਧਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੇ ਕੌਣ ਪਰਾਣੀ, ਨਾਨਕ ਸਾਧਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹੀ ਸਮਾਣੀ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪਰ ਫੁੱਲੈ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਆਵੇ ਬਸ ਪੰਚਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੂੰਚਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਣ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾ ਕਤਹੂ ਤਾਵੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਥਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਪਿੰਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੁਪ੍ਰਸਿੰਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਭ ਮੀਤ, ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਮਹਾਪਨੀਤ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਕਿਸਿਓ ਨਹੀਂ ਬੈਰ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾ ਬੀਗਾ ਪੈਰ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਹਉ ਤਾਪ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਤਜੇ ਸਭ ਆਪ, ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਸਾਧ ਬਡਾਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਣਿਆਈ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਾ ਕਬਹੂ ਧਾਵੈ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਹੇ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹੇ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਬਸੇ ਥਾਣੇ ਉੱਚੈ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜੇ ਸਭ ਧਰਮ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ, ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕਰਬਾਣ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਭ ਕੁੱਲ ਉਦਾਰੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਾਜਨ ਮੀਤ ਕਟੰਬ ਨਿਸਤਾਰੇ, ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਸੋ ਧਨ ਪਾਵੈ, ਜਿਸ ਤਨ ਤੇ ਸਭ ਕੋ ਵਰਸਾਵੇ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਕਰੇ ਸੇਵਾ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸੋ ਬਾਸੁਰ ਦੇਵਾ, ਸਾਧੂ ਕੇ ਸੰਗ ਪਾਪ ਪਲਾਇਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਣ ਗਾਇਨ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਰਬ ਥਣ ਗਮ, ਨਾਨਕ ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਸਫਲ ਜਨਮ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਹੀਂ ਕਿਸ ਕਾਲ, ਦਰਸ਼ਨ ਪੇਟਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਕਲੂਖਤ ਹਰੈ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਨਰਕ ਪਰ ਹਰੈ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਇਹਾ ਸਹੇਲਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਬਿਸਰਤ ਹਰ ਮੇਲਾ, ਜੋ ਇੱਛਾ ਸੋਈ ਫਲ ਪਾਵੇ, ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਬਿਰਥਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸਾਧਰਿਤ ਬਸੇ, ਨਾਨਕ ਉਦਰੇ ਸਾਧ ਸੁਣ ਰਸੇ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸੁਣਿਓ ਹਰ ਨਾਉ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਉ, ਸਾਧਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਮਨ ਤੇ ਬਿਸਰੈ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਰਪਨ ਨਿਸਤਰੈ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਲਾਗੇ ਪ੍ਰਭ ਮੀਠਾ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਕਟ ਕਟ ਡੀਠਾ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਪਏ ਆਗਿਆਕਾਰੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਈ ਹਮਾਰੀ, ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਰੋਗ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪਿਟੇ ਸੰਯੋਗ, ਸਾਧਕੀ ਮਹਿਮਾ ਬੇਦ ਨਾ ਜਾਣੇ, ਜੇ ਤਾ ਸੁਣੇ ਤੇ ਤਾ ਬਖਿਆਨੇ, ਸਾਧਕੀ ਉਪਮਾ ਤੈ ਗੁਣ ਤੇ ਦੂਰ, ਸਾਧਕੀ ਉਪਮਾ ਰਹੀ ਭਰਪੂਰ, ਸਾਧਕੀ ਸੋਭਾ ਕਨਾ ਹੀ ਅੰਤ, ਸਾਧਕੀ ਸੋਭਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤ, ਸਾਧਕੀ ਸੋਭਾ ਊਚ ਤੇ ਉੱਚੀ, ਸਾਧਕੀ ਸੋਭਾ ਮੂਚ ਤੇ ਮੂਚੀ, ਸਾਧਕੀ ਸੋਭਾ ਸਾਧ ਬਣੇ ਆਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭ ਭੇਦ ਨਾ ਪਾਈ। ਸਲੋਕ ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਈ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੇ ਇਕਸ ਬਿਨ ਕੋਈ, ਨਾਨਕ ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਈ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਲੇਪ, ਜੈਸੇ ਜਲ ਮੈਂ ਕਮਲ ਅਲੇਪ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਦਾ ਨਿਰਦੋਖ,
जैसे सूर सर्ब को सोक ब्रह्म ज्ञानी कै दिस समान जैसे राज रंग को लागे तुल पवान ब्रह्म ज्ञानी कै तीर जेक ज्यों बसदा को खोदे कौ चंदन लेप ब्रह्म ज्ञानी का यह गनाओ नानक ज्यो पावक का सह सभाओ ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मैल ना लागे जला ब्रह्म ज्ञानी क्या मन हुए परगास जैसे तारी ऊपर आकाश ब्रह्म ज्ञानी क्या मित्र सतर समान ब्रह्म ज्ञानी क्या नहीं अभिमान ब्रह्म ज्ञानी ऊंचे ऊंचा मन अपने है सब ते नीचा ब्रह्म ज्ञानी से जन पे नानक जिन प्रभ आप करे ब्रह्म ज्ञानी सगल की रीना आत्मरस ब्रह्म ज्ञानी चीना ब्रह्म ज्ञानी सब ऊपर मया ब्रह्म ज्ञानी कुछ बुरा न पया ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी ब्रह्म ज्ञानी दृष्ट अमृत बरसी ब्रह्म ज्ञानी बंधन ते मुक्ता ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता ब्रह्म ज्ञानी का पूजन ज्ञान नानक ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म त्यान ब्रह्म ज्ञानी एक ऊपर आस ब्रह्म ज्ञानी का नहीं बिनाश ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समाहा ब्रह्म ज्ञानी पर उपकार उमाहा ब्रह्म ज्ञानी का नाही धंधा ब्रह्म ज्ञानी ले ताबत बंदा ब्रह्म ज्ञानी क्या हुई सुपला ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला ब्रह्म ज्ञानी संग सगल उधारी नानक ब्रह्म ज्ञानी जपे सगल संसार ब्रह्म ज्ञानी क्या एक रंग ब्रह्म ज्ञानी क्या बसे प्रभ संग ब्रह्म ज्ञानी का नाम आधार ब्रह्म ज्ञानी का नाम परवार ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत ब्रह्म ज्ञानी अहबंद त्यागत ब्रह्म ज्ञानी का मन परमानंद ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद ब्रह्म ज्ञानी सुख सहज निवास नानक ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता ब्रह्म ज्ञानी क्या हुए अचिंत ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल मंत ब्रह्म ज्ञानी जिस करे प्रभ आप ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप ब्रह्म ज्ञानी का दर्श बड़ पागी पाईया ब्रह्म ज्ञानी को बल बल जाइया ब्रह्म ज्ञानी को खोजे महेश्वर नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर ब्रह्म ज्ञानी की कीमत नाही ब्रह्म ज्ञानी का सगल मन माही ब्रह्म ज्ञानी कौन जाने भेद ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश ब्रह्म ज्ञानी का कथया न जाए अताखरे ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर ब्रह्म ज्ञानी की मित कौन बखाने ब्रह्म ज्ञानी की गत ब्रह्म ज्ञानी जाने ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी सद जीवे नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त युक्त जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्ण पुरुष बदाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर हाथी ब्रह्म ज्ञानी का सगल आकार ब्रह्म ज्ञानी आप निरंकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बनी नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का तनी सलोक उतारे जो अंतर नाम शर्म पिख है भगवान निमख निमख ठाकुर नमस्कार नानको अपरस सगल निस्तारी अष्टपदी मिथ्या नाही रसना परस मन में प्रीत नरिंजन दर्श परतरिया रूप न पीखे नेत्र साधक टहल संसंग हेत करना सुने काहू की निंदा सब ते जाने आपस को मंदा गुर प्रसाद बिखिया पर हरे मन की बासना मन ते टरे इंद्री पंच दोक तेरा ते नानक मदे को ऐसा परस वैष्णो सो जिस ऊपर सुपर सिन बिसन की माया ते हुए पिन कर्म करत होवे नह कर्म तिस वैष्णो का निर्मल धर्म कहू फल की इच्छा नहीं बासे केवल भगत कीर्तन संग राचे मन तने अंतर सिमन गपाले सभी ऊपरे होवत कृपाल आप दृढ़ अवरा नाम जपावे नानको वैष्णो परमगत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल ते आगे दुष्ट

अनक प्रकारे अष्टपदी कई कोट होए पजारी कई कोट अचार बिहारी कई कोट पै तीर्थवासी कई कोट बन भरमा उदासी कई कोट वेद के सरोते कई कोट तपीशर होते कई कोट आत्म ध्यान तारे कई कोट काब कब बिचारे कई कोट ना तन नाम ते आवे नान करते का अंत न पावे कई कोट पे अभिमानी कई कोट अंध ज्ञानी कई कोट कृपण कठोर कई कोट अपिग आत्म निकोर कई कोट पर दर्प को हिर है कई कोट पर दुख ना कर है कई कोट माया शर्माही कई कोट परदेश पर माही जित तलावो तित लगना नान करते की जाने करता रचना कई कोट सित जती जोगी कई कोट राजे रस पोगी कई कोट पंखी सर्प उपाए कई कोट पाथर बिरख निप जाए कई कोट पौन पानी बसंतरे कई कोट देश पू मंडल कई कोट ससियर सूर नखत्र कई कोट देवदान नवेंद्र सिर सतर सगल समग्री अपने सूत्र तारे नानक जिस जिस पावे तिस तिस नस्तारे कई कोट राजे ताम साकत कई कोट वेद प्राण सिमरत अर शास्त्र कई कोट किए रतन समांदे कई कोट नाना प्रकार जंते कई कोट किए चिर जीव कई कोट गिरे मेर सरवन थीव कई कोट जा किन्नर पसांजे कई कोट पूत प्रे सुकर मिरगांज सब ते नेरे सबूते दूरे नानके आपल पतरेहा परपूरे कई कोट पताल के वासी कई कोट नरक सुर्ग निवासी कई कोट जन्म जीव मर है कई कोट बहु जोनी फिर है कई कोट बैठते ही खाहे कई कोट काले थक पाहे कई कोट किए तनवंत कई कोट माया मैं चिंत जय जय पाना तै तै राखे नानक सब किस प्रभ कै हाथे कई कोट पए बैरागे राम नाम संग तिन लिव लागे कई कोट प्रभ को खजंते आत्म मैं पर ब्रह्म लहंते कई कोट दर्शन प्राप्यास तिन को मिले प्रभ अभिनाश कई कोट मांगे सत्संग पार ब्रह्म तिन लागा रंग जिनको हुए आप सुप्रसन्न नानक ते जन सदा तन तन कई कोट खानी और खंड कई कोट आकाश ब्रह्मांड कई कोट हुए अवतारे कई जुगत की नो बस्तार कई बार पसरे उपसार सदा सदा एकंकार कई कोट किन्ने बहुपात प्राप्ते हुए प्रभ महे समात ताका अंत न जाने कोई आपे आप नानक प्रभ सोई कई कोट पर ब्रह्म के दास तिन होवत आत्म परगास कई कोट तत् के बेते सदा निहार है इको नेत्रे कई कोट नाम रस पीवे अमर पे सत सद ही जीवे।

कई कोट नाम गुण गावे, आत्मरा सुख सहज समावे, अपने जन को सा साथ समारे, नानक ओई परमेश्वर के प्यारे। सलोक करन कारण प्रभ एक है, दूसर नाही कोए, नानक तिस बलहारन जल थल मही अल सोए। अष्टपदी करन करावन करना जोग, ज्योत पावे सोई होग, खिन मैं थापु थापन हारा, अंत नहीं किश पारा वारा, हुक्मे तार अदर रहावै, हुक्मे उपजै हुक्म समावै, हुक्मे ऊच नीच व्यवहारे, हुक्मे अनक रंग परकारे, कर कर देखे अपनी वड्याई, नानक सब मैं रहा समाई, प्रभ पावे मन गत पावे, प्रभ पावे ता पाथर तरावे, प्रभ पावे बिन सास ते राखै, प्रभ पावे ता हर गुण पाखे, प्रभ पावे ता पतित उदारे, आप तर करे आपन बिचारे, दूसरिया का आप स्वामी, खेले बिकसै अंतर जामी, जो पावे सो कार करावे, नानक दृष्टि अवर न आवे, कहो मानक ते क्या हुए आवे, ज्योत स पावे सोई करावे, इसका हाथ हुए ता सब किश ले, ज्योत स पावे सही करे, अनजानत बिख्या मैं रचे, जे जानते अपन आप बचे, परमे पूला दै दिसतावे, निमख मैं चार कुंड फेरे आवे, कर कृपा जिसे अपनी भगती दे, नानक ते जन नाम मले, खिन मैं नीच कींट को राजे, पार ब्रह्म गरीब नवाजे, जा का दिष्ट कछु ना आवे, तिस तत्काल दै दिस प्रगटावे, जा कोई अपनी करे बख्शीश, ता का लेखा न गणे जगदीश, जियो पिंड सब तिसकी रास, कट कट पूरन ब्रह्म परगास, अपनी बनते आप बनाई, नानक जीवै देख बढ़ाई, इसका बल नहीं सहाथे, करन करामन सर्ब को नाथ, आज्ञाकारी बपरा जियो, ज्योत पावे सोई फन थियो, कबहू उच नीच मैं बसै, कबहू सो घर खरंग हसे,

बिकराले, कबहू सर्ब की हो तरवाले, कबहू हुए बहे बडराजा, कबू पिखारी नीच का साजा, कबहू आप कीर्त में आवे, कबहू पला पला कहावे, ज्यों प्रभ राखे तिम ही रहे, गुर प्रसाद नानक सच कहे, कबहू हुए पंडित करे बखियान, कबहू मुन तारी लावे त्यान, कबहू तड़ तीर्थ स्नान, कबहू सिद्ध साधक मुख ज्ञान, कबहू कीट हस्त पतंग हुए जिया, अनक जोन परमे परमिया, नाना रूप ज्यों स्वागी दिखावे, ज्यों प्रभ पावे तिमें नचावे, ज्योत सपावे सोई हुए, नानक दूजा अवर ना कोई, कबहू साध संगत एहो पावे, उस स्थान ते बहुर न आवे, अंतर हुए ज्ञान प्रगासे, उस स्थान का नहीं विनाश, मन तन नाम रते करंग, सदा बसे पर ब्रह्म कै संग, ज्यों जल में जल आए खटाना, त्यों ज्योति संग ज्योत समाना, मिट गए गवन पाए विश्राम, नानक प्रभ कै सद

गले अष्टपदी जिसके अंतर राज अभिमान सो नरक पाती होत सवान जो जाने मैं जो बणवंत सो उतबिष्टा का जंत आपस को करमंत कहावे जन मरे बो जोन परमावे तन भूम का जो करे गमान सो मूर्खंदा अज्ञान कर कृपा जिसका हृदय गरीबी बसावै नानकी हा मुक्ति आगे सुख पावे तनवंता हुई कर गरबावे त्रिन समानक संग न जावे बहु लस्कर मानक ऊपर करे आस पल पीतर तांका हुई बिनास सब ते आप जाने बलवंत खिन मैं हुई जाए पसमंत किसे न बदे आप हंकारी तरम राय तिस करै खवारी गुर प्रसाजक मिटै अभिमान सो जन नानक दरगै परवान कोट कर्म करै हउ तारी शर्म पावे सगले बिरथारी अनक तपस्या करै हंकारी नरक सुर्ग फिर अवतार अनक जतन कर आत्म नहीं दरवै हर दरगै कौ कैसे गर्व गवै आपस को जो पला कहावे तिसे पलाई निकट न आवे सर्व की रेंजा का मन हुए कहो नानक ताकि निर्मल सोए जब लग जाने मुझते कुछ हुए तब इसको सुख ना ही कोई जाबे जाने मैं किस करता तब लग गर्भ जोन मैं फिरता जब तारे को बैरी मीत तब लगने चल ना ही चीत जब लग मोह मगन संगमाए तब लग तरमराई दे सजाए प्रभ कृपाते बंधन टूटे गुर प्रसाद नानक हउ छूटे सहज कटे लाको उठ तावै तृप्त न आवे माया पाछे पावे अनक भोग बिखिया क्या करें ना तृप्तावे खब खब मरे बिना संतोक नहीं कौ राजे सुपन मनोरथ बिरथे सब काजे नाम रंग सर्व सुख होए बड़ पागी किसाय प्राप्त होए कर्ण करावण आपे आप सदा सदा नानक हर जाप कर्ण करावण करने हार इसके हाथ कहाँ विचार जैसा जिस करे तैसा हुए आपे आप आ प्रभ सोए जो किशकीनो सो अपना रंग सब ते दूर सबू कै संग बूझे देखे करे बबेक आपे कापे अनेक मरे न बिन से आवे न जाए नानक सद ही रहा समाए आप पदेसे समझे आप आपे रचया सबका साथ आप कीनो अपन विस्तार सब किश उसका

हार कौतक करे रंग अपार मन मैं आप मने अपने माहे नान कीमत कह न जाए सत सत सत प्रभ स्वामी गुर प्रसाद किने वखयानी सच सच सत सब कीना कोट मदे किन बिरले चीना पला पलत पला तेरा रूप अत सुंदर अपार अनूप निर्मल निर्मल निर्मल तेरी बाणी कट कट सुनी सरवण बखयानी

परा सो जन उदर नहारे संत के निंदा नानका बहुरे बहुरे अवतारे अष्टपदी संत का दुखन यार जा कटे संत का दुखन जमते नहीं छूटे संत का दुखन सुख सब जाए संत का दुखन नरक मा पाए संत का दुखन मत हुए मलीन संत का दुखन शोभा तेहीन संत के हते को रखे ना कोई संत का दुखन थान प्रस्त हुए संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदक भी तरे संत का दुखन ते मुख पवे संतन का दुखन काग ज्यो लवे संतन का दुखन सर्व ज्योन पाए संत का दुखन तिरगत ज्योन करमाए संतन का दुखन तृष्णा मैं जले संत का दुखन सब को शले संत का दुखन ते सब जाए संत का दुखन ने नचाए संत दुखी का थां को नाही नानक संत पावे ता ओ भी गत पाहे संत का निंदक महत ताए संत का निखिन टिकर ना पाए संत का निंदक महत यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राजते हीन संत का निंद दुखिया और दीन संत के निंद को सर्व रोग संत के निंद को सदा वियोग संत के निंदा दुख मैं दुख नानक संत पावे ता उसका पी होए मोख संत का दुखी सदा पवित संत का दुखी किसे का नहीं मित संत के दुखी को डन लागे संत के दुखी को सब त्यागे संत का दुखी महंकारी संत का दुखी सदा बेकारी संत का दुखी जन्म मरे संत के दुखना सुखते टरे संत के दुखी को ना ही ठाऊ नानक संत पावे ता ले मलाए संत का दुखियाद बीते टूटे संत का दुखी ते काज न पहुंचे संत का दुखी क्यों ध्यान परमाया संत का दुखी उजड़ पाया संत का दुखी अंतर ते थोथा ज्यों सास बिना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ किश नाही आपन बीज आपे ही खाही संत के दुखी को अवर न रखन हारे नानक संत भावे ता लए उबारे संत का दुखी यूं बिललाए ज्यों जल बहौन मछली तड़फड़ाए संत का दुखी भूखा नहीं राजे ज्यों पावक इंधन नहीं त्रापे संत का दुखी छुटया अकेला ज्यों बाड़ तिल खेत माहे दोहेला संत का दुखी तर्म तैराते संत का दुख सद मिथ्या कैत किरत निंदका तुर ही पया नानक ज्योत सपावे सोई थिया संत का दुखी बिगड़ुप हो जाए संत के दुखी को दरगाह मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाइया संत का दुखी ना मरे ना जीवाइया संत के दुखी की पूजे ना आसा संत का दुखी उठ चले नरासा संत का दुख न त्रिस्ते कोई जैसे पावे तैसा कोई हुए पया किरत ना मेटे कोई नानक जाने साचा सोए सब कर तिसके ओ करने हारे सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभ की उस्तत करो दिन रात तिसे ते आबो सास गरास सब किश वरते तिसका किया जैसा करे तैसा कोथिया अपना खेले अप करने हारे दूसरे कौन कहे बेचार जिसनो कृपा करे तिसे अपन नाम दे बड़ पागी नानक जन सही सलोक तजो से आनप सुर जनो सिमरो हर हर राय एक आस हर मन रखो नानक दुख परम पौ जाए अष्टपदी मन की टेक बिरथी सब जान देवन को एक कै भगवान जिसका दिया रहे अकाए।

उदरिया नानक तिस बलहारी अष्टपदी टूटी गंडन हार गपाल सर्ब जिया आपे पितपाल सल की चिंता जिस मन माही तिस ते बिरथा कोई नाही रे मन मेरे सदा हर जाप अबनासी प्रभ आपे आप आपन किया कछु ना हुई।

प्रभ की जोत सगल कट सोही, तनवंता हुई क्या को गर्बै, जा सब किस तिसका दिया दरबै, आतसूरा जे कऊ कहावे, प्रभ की कला बिना कहतावे, जे को हुए बहेद तार, तिस देन हार जाने गवार, जिस गुर प्रसाद तुटे हो रोग, नानक सो जन सदा रोग, ज्यों मंदर को थामै थमन, त्यों गुर का शब्द मनो अस्थमन, ज्यों पखान नावचर तरे, प्राणी गुर चरण लगत निस्तरे, ज्यों अंधकार दीपक परगास, गुर दर्शन देख मन हुए बिगास, ज्यों महा ध्यान में मार्ग पावे, त्यों साधु संग मिल ज्योत प्रगटावे, तिन संतन की बांछो तूड़, नानक की हर लो चापूर, मन मूर्ख का हे बिल लाइया, पूर्व लिखे का लिखिया पाइया, दुख सुख प्रभ देवन हार, अवर त्याग तू तिसे चितार, जो किछ करे सोई सुख मान, पूला का हे फिरे अजान, कौन बसते आए तेरे संग, लपट रहो रस लोभी पतंग, राम नाम जप हिरदे माहे, नानक पत सेती कर जाहे, जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया, ताजे अभिमान लिहो मन मोल, राम नाम हिरदे मैं तोल, लाद खेप संतै संग चाल, अवर त्याग बिखिया जंजाल, तन तन कहे सब कोई, मुख उज्जल हर दरगह सोई, एहो वपार विरला वपार, नानक तां कै सत बलहारे, चरण साध के तुए तुए पियो, अर्प साध कोए अपना जियो, साध की तूड़ करो इशनान, साध ऊपर जाइए कुरबान, साध सेवा वडपागी पाइए, साध संग हर कीर्तन गाइए, अनक बिगन ते साधु राखे, हर गुण गाई अमृत रस चाखे, ओट गई संतां दरियाया, सर्व सुख नानक तै पाया, मृतक को जिवालन हार, भूखे को देवता आधार, सर्व दान जाकी दृष्टि माहे, पूर्व लिखे का लहना पाहे, सब किस तिसका ओ करने जोग, तिस बिन दूसर हुआ न होग, जप जन सदा सदा दिन रहने, सब ते ऊच निर्मले करने, कर कृपा जिसको नम दिया, नानक जो जन निर्मल थिया, जा कै मन गुर की प्रतीत, ते जने आवे हर पब चीत, भगत भगत सुनिया तोए लोए, जा कै हिरदे को होए, सच करनी सच तां की रात, सच हिरदे सत मुख कैत, साचे दिर साचा कारे, सच वरते साचा पसार, पार बम जिन सच कर जाता, नानक सो जन सच समाता सलोगे।

सुप्रसन्न अष्टपदी अविनाशी प्रभ मन में राख मन की तू प्रीत त्याग तिस्ते पर नाही किश कोई सर्व निरंतर एको सोए आपे बिना आपे दाना गहर गंभीर गहीर सजाना पार ब्रह्म परमेश्वर गोबिंद कृपा निदान दयाल बख्शंद सा तेरे की चरनी पाओ नानके मन एह नराओ मनसा पूरन सरना जोग जो कर पाया सोई होग हरन परंजा का नेत्र फोर तिसका मंत्र न जाने होर नंद रूप मंगल सत जा कै सर्ब थोक सुनिया करता के राज मैं राज जोग मैं जोगी तमत पिशर ग्रासत मैं पोगी त्याय त्याय भगत सुख पाया नानक तिस पुरका किने अंत न पाया जाकी लीला की मत नाही सगल देव हारे अवगाही पिता का जन्म के जाने पूत सगल परोए अपने सूत समत ज्ञान त्यान जिंदे जन दास नाम ते आवे सोए त्या गुण मैं जाको परमाए जन्म मरे फिर आवे जाए ऊज नीच तिस कै स्थान जैस जनावे

नाना चलत करे खिन माही, पूरे पूर्ण सब ठाए नाना बिद कर बंत बनाई, अपनी कीमत आपे पाई, सब कर तिसकै सब तिसकै ठाऊं, जप जप जीवै नानक हर नाऊं, नाम के तारे सगले जंत, नाम के तारे खंड ब्रह्मांड, नाम के तारे सिमरत वेद प्राण, नाम के तारे सुनन ज्ञान त्यान, नाम के तारे अगास पताल, नाम के तारे सगल आकार, नाम के तारे पूरियां सब पवन, नाम के संग उदरे सुन सरवन, कर कृपा जिसे अपने नाम ले, नानक चौथे पद मैं सो जनगत पाए, रूप सत जंका सत स्थान, पुरख सत केवल प्रदान, करतूत सत सत जांकी बाणी, सत पुरख सब माहे समाणी, सत कर्म जांकी रचना सत, मूल सत सत उत्पाते, सत करनी निर्मल नर्मली, जिसे बजाए तिसे सब पली, सत नाम प्रभ का सुखदाई, विश्वास सत नानक गुर ते पाई, सत बचन साधु उपदेश, सते जन जा के हृदय प्रवेश, सत निरत बुझे जे कोई, नाम जब ताकी गत हुई, आप सत किया सब सत, आपे जाने अपनी मित गाते, जिसके शिष्ट सु करने हार, अवर ना बूझे करत विचार, करते की मित न जाने किया, नानक ज्योत सपावै सो वर्तिया, बिस्मन बिस्म पे बिस्माद, जिन बुझिया तिस आया स्वाद, प्रभ के रंग राच जन रहे, गुर के बजन पदार्थ लहे, ओ दाते दुख कटन हारे, जां कै संग तरा संसार, जन का सेवक सो वडपागे, जन कै संग एक लिव लागे, गुण गोबिंद कीर्तन जन गावै, गुर प्रसाद नानक फल पावे, सलोक आदि साचे जुगाद साचे, है पे साचे नानक होसी, पे साचे अष्टपदी, चरण सत सत प्रसन हार, पूजा सत सत सेवदार, दर्शन सत सत पेखन हार, नाम सत सत आमन हार, आप सत सत सब तारी, आपे गुणे आपे गुणकारी, शब्द सत सत प्रभगता, सूरत सत सत जा सुनता, बूजन हर को सत सब हुई, नानक सत सत प्रभ सुई, सत स्वरूप हृदय जिन मानिया, करन कराम तिन मूल पछाणिया, जां के हृदय विश्वास पवे आया, तत ज्ञान तिस मन प्रगटाया, पैते निरपो हुए बसाना, जिसते उपजया तिस माहे समाना, बस्त मैला बस्त गडाई, ताको भिन्न न कहना जाई, बूजे बूजन हार बबेक, नारायण मिले नानक एक, ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी, ठाकुर का सेवक सदा पुजारी, ठाकुर के सेवक है मन प्रतीत, ठाकुर के सेवक निर्मल रीत, ठाकुर का सेवक जाने संग, प्रभ का सेवक नाम के रंग, सेवकौ प्रभ पालन हारा, सेवक की राखे निरंकारा, सो सेवक जिस दया प्रभ तारे, नानक सो सेवक सा सा समारे, अपने जन का पर्दा टाके, अपने सेव की सर पर राखे, अपने दास को दे वडाई, अपने सेव को नाम जपाई, अपने सेव की आप पत राखे, ताकि गतमत कोई ना लाखे, प्रभ के सेव को ना पहुंचे, प्रभ के सेवक ऊंच ते ऊंचे, जो प्रभ अपनी सेवा लाया, नानक सो सेवक दया दिस प्रगटाया, नीकी कीरी मैं कल राखे, पसम करे लश्कर कुट लाखे, जिसका शासन काढ ते आप, ताको राख दे कर हाते, मान जतन करत बहु पात, तिसके करतब बिरथे जाते, मारे न राखे अवर न कोई, सर्ब जिया का राखा सोई, काहे सोच करे रे प्राणी, जप नानक प्रभ अलख बडाणी, बारंग बार बार प्रभ जपिया, पी अमृते मन तन त्रपिया, नाम रतन जिन गुरमुख पाया, तिस किस अवर नहीं दृष्टाया, नाम तन नामो रूप रंगे, नामो सुख हर नाम का संगे, नाम रस जो जन तृप्ताने, मन तन नामे नाम समाने, उठत बैठत सोवत नाम, कहो नानक जन कै सदकाम, बोलो जाचे बा दिन रात, प्रभ अपने जन कीनी दात, करे भगता तम कै चाय, प्रभ अपने स्यों रह समाए, जो होवा होवत सो जाने,
प्रभ अपने का हुक्म पछाने तिसकी महिमा कौन बखानियो तिसका गुण का एक न जानियो आठ पैर प्रभ से हजूरे कहो नानक सही जन पूरे मन मेरे तिन की उटले हो मन तने अपना तिन जन दे हो जिन जन अपना प्रभु पछाता सो जन सर्ब थोक का दाता तिसकी शरण सर्ब सुख पावे तिसका इधर सब पाप मिटावे अवर से अनप सगली छाड़ तिस जन की तू सेवा लाग आवन जान ना हो भी तेरा नानक तिस जन कै पूजो सद पैरा सलोके साते पुरख जिन जाने सतगुरु तिसका नाओ तिसके संग सिख उदर नानक हर गुण गाओ अष्टपदी सतगुरु सिखी करे पितपाल सेवक गुर सदा दयाल सिखी गुर दुरमत मल हिरे गुर बचनी हर नाम उचरे सतगुरु सिखे बंधन काटे गुर का सिख बेकार ते हटे सतगुरु सिखो नाम तन दे गुर का सिख वडपागी हे सतगुरु सिखा हलत पलत सवारे नानक सतगुरु सिखो जी नाल समारे गुर के ग्रह सेवक जो रहे गुर की आग्या मन मै सहे आपस को कर कछु न जनावे हर हर नाम हृदय सत्य आवे मन बेचै सतगुर कै पास तिस सेवक के कारज रास सेवा करत हुए नेकामी तिसको होत प्राप्त स्वामी अपनी कृपा जिसे आप करे नानक सो सेवक गुर की मत ले बिस बिस में गुर का मन माने सो सेवक परमेश्वर की गत जाने सो सतगुर जिसर दे हर नाओ अनक बार गुर को बल जाओ सर्व निदान जिया का दाटा आठ पैर पर ब्रह्म रंग राता ब्रह्म जन जन मै पर ब्रह्म एक के आप नहीं किश परम सास से अन बलया न जाइया नानक ऐसा गुर वड पागी पाइया सफल दर्शन पेकत पनीत पर सतचरण गत निर्मल रीत पेट संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगाह गवे सुनकर बचन करन अकाने मन संतोख आत्म पत्याने पूरा गुराखो जांका मंत्र अमृत दिष्ट पेखे हुए संत गुण बेअंत कीमत नहीं पाए नानक जिस पावे तिसले मलाए जिह बाएक उस्तत अनेक सत पुरख पूरन बबेक काहू बोल न पहुंचत प्राणी अगमा गोचर प्रभ निर्वाणी निरहार निर्वैर सुखदाई ताकि कीमत किने न पाई अनक भगत बंधन नित करे चरण कमल हिरदे सिमरे सत बलहारी सतगुर अपने नानक जिस प्रसाद ऐसा प्रभ जपने ए हरस पावे जन कोई अमृत पीवे अमृत सुहोए उस पुर का नाही कदे विनाश जाके मन प्रगटे गुणतास आठ पैर हर का नमले सच उपदेश सेवक को दे मोह माया के संग ना लेप मन मैं राखे हर हर एक अंधकार दीपक परगासे नानक परम मोह दुख तैते नासे तब तो मैं ठाठ बरताई आनंद पया दुख नाठे पाई जन्म मरण के मिटे अंदेसे साधु के पूरने उपदेशे पाओ चुका निरपाओ हुए बसे सगल ब्याद मन ते खै नसे जिसका सतन कृपा तारी साध संग जप नाम मरारी तिथ पाए चुके परम गमन सुन नानक हर हर जस सरवन निर्गुण आप सरगन भी ओही कला तारे जिन सगली मोही अपने चरिते प्रभ आप बनाए अपनी कीमत आपे पाए हर बिन दूजा नाही कोई सर्ब निरंतर एको सोए ओत पोत रव्या रूप रंग पय परगास साधके संग रच रचना अपनी कल तारी अनक बार नानक बलहारी सलोक साथ न चाले बिन भजन बिखिया सगले इशारे हर हरि नाम कमावना नानक हो तन सारे अष्टपदी संत जना मिल करो विचार एक सिमर नाम आधार अवर उपाउ सब मीत बसारू चरण कमल रिद मह उतारू करण कारण सो प्रभ समरथ दृढ़ कर गहो नाम हर वथ हर तन संचो हो भगवंत
संत जना का निर्मल मंत एक आस रखो मन माहे सर्ब रोग नानक मिट जाहे जिस तन को चर कुंट उठतावे सो तन हारे सेवा ते पावे जिस सुख को नित बाछे मीत सो सुख साधु संग परीत जिस शोभा को करे पलि करनी सा शोभा पज हर की सरनी अनको पावी रोग न जाए रोग मिटे हर अवख दलाए सर्व निदान मैं हर नाम निदान जप नानक

जाप अष्टपदे जब अकार एक अशुना दृष्टिता पाप पुन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाद तब बैर विरोध के संकमाद जब इसका वर्ण चिन्ह न जापत तब हरख सोग कहो किसे व्याप्त जब अपने आप पर ब्रह्म तब मोह कहा किसे होवत परम आपन खेले आप वर्ती जा नानक करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किस को गणी जब एक हर अगम अपार तब नरक सुरग कहो कवन अवतार जब निर्गन प्रभ सह सबाए तब शिव सक्त कहो कित ठाए जब आपे आप अपनी जोत तरे तब कवन न डरे कवन कत डरे आपन चलत आप करने हारे नानक ठाकरे अगमा पारे अबनासी सुखे अपने आसन तै जन्म मरण कहो कहां बनासन जब पूरन करता प्रभ सोए तब जम की त्रास कहो किश हुए जब अभिगत गोचर प्रभ एका तब चित्र गुप्त किश पूछत लेका जब नाथ निरंजन अगोचर अगादे तब कौन छुटे कौन बंधन बांधे अपने आप ही अचर जा नानक आपन रूप आप ही उपर जा जै निर्मल पुरख पत होता तै बिन मैल कहूं क्या तोता जह निरंजन निरंकार निर्बाण तै कौन को मान कौन अभिमान जह स्वरूप केवल जगदीश तै शल शद्र लगत कहूं कीश

का नहीं सुमार, जब अपनी शोभाया अपन संग बनाई, तब कवन माई बाप मित्र सुत पाई, जय सर्व कला आपे परवीन, तै वेद कतेब कहा को चीन, जब अपने आप उरतारे, तो सगन अब सगन कहा बिचारे, जह अपने ऊचे अपने आपे नेरा, तै कौन ठाकर कौन कही आ चेरा, बिस्मन बिस्म रहे बिस्माद, नानके अपनी गत जानो आप, जय अचल अछेद अपेद समाया, ऊहा किसे व्याप्त माया, आपस को आपे आदेश, तै गुण का नाही प्रवेश, जय एक क्या एक एक भगवंता, तै कौन चिंत किस लागे चिंता, जय अपने आप पत्यारा, तै कौन कथे कौन सुनने हारा, बहु बेअंत ऊंच ते ऊंचा, नानक आपस को आपे पहुंचा, जय परच उपर पंचाकार, तै गुण मैं किनो बस्तार, पाप पुन तै पई कहावत, कौशु नरक कौ सुरंग बसावत, आल जाल माया जंजाल, होमे मोह परम पैपार, दुख सुख मान अपमान, अनक प्रकार की उपख्यान, आपन खेले आप कर देखा, खेल संकोचे तो नानक एक, जह विगते भगत आप, जय पसरे पसार।

पार ब्रह्म निकट कर पेख साह साह सिमरो गोबिंद मन अंतर के उतरे चिंद आस अनंत त्याग उतरंग संत जना की तूड़ मन मंग आप छोड़ बेनती करहु साध संग अगन सागर तरहु हर तन के पर लेहो पंडार नानक गुर पूरे नमस्कार खेम कुशल सहज आनंद साध संग पज परमानंद नरक निवारे उदारो जियो गुण गोविंद अमृत रस पियो चित चित वो नारायण एक एक रूप जाके रंग अनेक गोपाल दमोदर दीन दयाल दुख पंजन पूरन कृपाल सिमर सिमर नाम बारंबार नानक जी का यह उदार उत्तम श्लोक साध के बचन अमलीक लाल एहो रतन सुनत कमावत होत आधार आप तरह लोके निस्तार सफल जीवन सफलता का संग जाका मन लागा हर रंग जो जो शब्द अनाहद बाजे सुन सुन नंद करे प्रभ गाजे परगटे गोपाल महांत कै माथे नानक उदरे तिन कै साथे सरन जोग सुन सरनी आए कर कृपा प्रभ आप मलाए मिट गए बैर पए सब रेन अमृत नाम साध संग लैन सुप्रसन्न पए गुरुदेव पूरन होई सेव की सेव आल जंजाल बेकार ते राते राम नाम सुन रसना कहते कर प्रसाद दया प्रभ धारी नानक निभी खेप हमारी प्रभ की उस्त करो संत मीत सावधान एकागर चीत सुख मन सहज गोबिंद गुण नाम जिस मन बसे सुहोत निदान सर्व इच्छा ता की पूर्ण होए प्रदान पुरख प्रगट सब लोए सब ते उच पाए स्थान बहुर ना होवे आमन जान हर तन खाट चले जन सोए नानक जिसे प्राप्त हुए खेम संत रिद नाम निद विद्या तप ज्ञान बुद्ध ज्ञान सर्वता सिद्ध विद्या तप योग प्रवत्यान ज्ञान श्रेष्ठ उत्तम शिनान चार पदार्थ कमल प्रगास सब कै मद सगल ते उदास सुंदर चतरे तत का बेता समदर्शी एक दृष्टिता ए फल तिस जन के मुख बने गुण नानक नाम बचन मन सुने एहो निदान जपे मन कोई सब जुग मैं ता की गत हुए गुण गोबिंद नाम तुन बाणी सिमरत शास्त्र बेद बखाणी सगल मता ते केवल हरि नाम गोविंद भगत कै मन बिसराम कोट पराध साध संग मिटै संत कृपा ते जम ते छुटै जा कै मस्त करम प्रभ पाए साध सरन नानक ते आए जिस मन बसे सुने लाए प्रीत तिस जाने आवै हर प्रभ चीत।

कोई नाउ न जाने मेरा वाहिगुरु। बोलो जी वाहिगुरु। एक ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती समर के गुरु नानक लाइन ते आए। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदासें हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नू सिमराऊं श्री हर राय। श्री हर कृष्ण ते आइए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमर आए करनाउन दे आवे ताई। सब थाई होए सहाय। दसवां पातशाह साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी। सब थाई होए सहाय। दसां पातशाहियां दी जोत। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी के पाठ दीदार दा ध्यान करके बोलो जी। पंजां प्यारियां चौहां साहिबजादियां चालियां मुक्तियां शहीदां मुरीदां हठियां जपियां तपियां सिदकवाना जिन्हां नाम जपया वंड की छकिया देख चलाई तेग बाही देख के अनडिठ कीता सचारियां प्यारियां की कमाई का ध्यान करके बोलो जी। जिन्हां सिंघां सिंघणियां ने धर्म हेत शीश दिते बंद बंद कटाए खोपरियां लवाइया चरखड़ियां ते चढ़ी तन आरियां नाल चरवाए सिखी सिदक केसां श्वासां संग निभाई तिन्हां दी कमाई दा ध्यान करके बोलो जी। पंजां तख्तां सरबत गुरद्वारियां दा ध्यान करके बोलो जी। प्रथमे सरबत खालसा जी की अरदास है जी। सरबत खालसा जी कहो वाहिगुरु वाहिगुरु वाहिगुरु। चेता वे चेतावन का सदका सर्व सुख होवै। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रख्या रियायत देग तेग फतेह बिरद की पैज रहे पंथ की जीत। श्री साहिब जी सहाए। खालसा जी के बोल बाले बोलो जी। सिखां नूं सिखी दान केस दान रहत दान बबीक दान विसाहो दान भरोसा दान दाना सिरदान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी के दर्शन इशनान चौंकियां झंडे बुंगे जुगो जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी। सिखां दा मन नीवा मत उच्ची मत का राखा आप वाहिगुरु। हे अकाल पुरख वाहिगुरु अपने पंथ दे सदा सहाई दा तार जियो। श्री ननकाणा साहिब ते होर गुरद्वारियां गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है तिन्हां दे खुले दर्शन सेवा संभालता दा दान प्यारी खालसा जी नूं बख्शो।